0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: यकम अक्टूबर 2025 से 30 जून 2026 तक के दौरानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों में 499 आम शहरी हलाक हुए। अक़वामे मुत्तहिदा के अफगानिस्तान इमदादी मिशन ने इस दौरानी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने वाली झड़पों के बारे में एक रिपोर्ट जारी की। बयान में कहा गया कि इन झड़पों में अफगानिस्तान में 499 आम शहरी हलाक और 1216 जख्मी हुए। अफगानिस्तान बाज़ाब्ता तौर पर ड्यूरेंट लाइन को बतौर सरहद तस्लीम नहीं करता, जो पाकिस्तान के साथ उसकी सरहद के तौर पर मानी जाती है। इसी वजह से दोनों फरीकों के दरमियान सरहदी तनाज़ात और जानी नुकसान तक जाने वाली झड़पें पेश आ सकती हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ मुसल्लह तंजीमों की सरगर्मियाँ भी दोनों हमसायों के ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती हैं। इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में ठिकाने बनाकर हमले यहाँ से मुनज़म कर रहे हैं, जबकि काबुल इन इल्ज़ामात को रद्द करता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशत गर्दाना हमलों को जवाब बनाकर पाकिस्तान वक्तन फवक्तन अफगान सरजमीन पर फौजी कार्रवाइयाँ करता है और अफगान अफवाज भी इन हमलों का जवाब देती हैं।
0: गजा मलबे तल से निकाली गई लाशें खत्म इंसानी अलमियों को एक बार फिर अयां कर रही हैं। गजा की पट्टी के जनूब में वाकया सबरा महल्ले में इसराइल की तरफ से निशाना बनाई गई एक इमारत के मलबे से दो खानदानों से ताल्लुक रखने वाले 99 अफराद की लाशें निकाली गई। तकनीकी सहूलियात के फुकदान के बावजूद इमदादी टीमें कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इनका कहना है कि ताहाल हजारों अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। बयान किया जाता है कि पूरे गजे में 50 मिलियन टन से ज्यादा मलबा मौजूद है। तकरीबन 8,500 लाशों को निकालना मकसूद है। इसराइल की तरफ से इलाके में भारी मशीनरी के दाखिले की इजाजत न देने की बिना पर इमदादी काम महज एक मशीन की मदद से अंजाम दिया जा रहा है।
1: सरकारी खबर रसा एजेंसी पेट्रा की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन की फौज ने आज सुबह सवेरे मशरकी सहरा में मुल्क की फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। फौज ने बताया कि ड्रोन को उर्दनी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने के बाद नाकारा बनाया गया, जबकि किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब एक दिन पहले ही उर्दनी फौज ने ममलिकत को निशाना बनाने वाले दो ड्रोन्स को मार गिराने का ऐलान किया था। इसराइली फौज ने भी उर्दन की सरहद के करीब दो ड्रोन्स को नाकारा बनाने का दावा किया। ताहम उनका कहना था कि ये ड्रोन्स इसराइली फिजाई हदूद में दाखिल नहीं हुए थे। ये पेशरफ सऊदी अरब के उस ऐलान के बाद सामने आई है जिसमें पीर के रोज़ बताया गया था कि उसने इराक से दागे गए मुतादा ड्रोन्स को नाकारा और तबाह कर दिया है, जो मुल्क में तेल की तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। किसी भी ग्रुप ने इन ड्रोन वाकयात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इतवार के रोज़ ईरानी अस्करी तर्जुमान ने कहा कि गुज़िश्ता दो दिनों के दौरान ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले रुकने के बाद तेहरान ने अपनी फौजी कार्रवाइयाँ रोक दी हैं। एक्सियोज़ ने रिपोर्ट किया था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीबन दो हफ्तों तक जारी रहने वाले रोज़ाना के हमलों के बाद फौज को ईरान पर मजीद हमले रोकने का हुक्म दिया है।
0: मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरमा सबरी ने कहा, इसराइली हमले खा कितने ही शदीद क्यों न हो जाएं, फलस्तीनी अवाम मस्जिद अक्सा से कभी भी दस्तबरदार नहीं होंगे। शेख सबरी ने इन ख्यालात का इजहार बाबुल असबात मुज़ाहमत की 9वीं सालगिरह के मौके पर किया, जिसके नतीजे में इसराइल पुलिस की जानब से 2017 में मस्जिद अक्सा में नस्ब किए गए इलेक्ट्रॉनिक तलाशी के दरवाजे हटा दिए गए थे। इस फतह को एक तारीखी संग मील करार देते हुए उन्हें इस बात पर जोर दिया मुकदस मकाम की इस्लामी खुद मुख्तारी को बरकरार रखा गया है, वहां की एक इंच जमीन भी नहीं छोड़ी जाएगी। मकबूजा बैतुल मुकद्दस और फलस्तीन के साबिक मुफ्ती आजम ने हाल ही में बढ़ती हुई इसराइल खिलाफ वर्जियों की तरफ भी तवज्जो दिलाई और इस बात पर जोर दिया, अपनी छापों को कभी भी मामूल नहीं माना जाएगा। यह गासिब कुवतों को मुकद्दस मकाम पर कोई कानूनी या तारीखी जवाब फराहम नहीं करते। उनका फलस्तीन अवाम बड़ी कुर्बानियां देकर मस्जिद अक्सा की चौकीदारी जारी रखे हुए हैं, जबकि उन्होंने मुस्लिम उम्मा पर जोर दिया वो इस मुकद्दस अमानत की हिफाजत करे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे।
1: अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल और लबनान के दरमियान हाल ही में कायम करदा अमरीकी ज़ेर क़यादत अमन फ्रेमवर्क को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए सिक्योरिटी मुज़ाकरात अगले हफ्ते रोम में दोबारा शुरू होने वाले हैं। तकनीकी उमूरी ग्रुप्स 4 से 6 अगस्त तक होने वाले इजलास में बुनियादी तौर पर जनूबी लबनान में पायलट सिक्योरिटी जोन को बढ़ाने और दोनों ममालिक के दरमियान देरीना सरहदी तनाज़ात को हल करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। अमरीकी उमूर खारजा के हुकाम ने बताया है कि लुबनानी सदर जोसेफ ऑन और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान हालिया मुलाकात के बाद सफारती कोशिशों में नुमाया रफ्तार आई है।
0: तिबी अमले के मुताबिक गजा में जारी जंगबंदी माहदे की ताज़ा खिलाफ वर्जी में मजीद 3 फलस्तीनी हलाक और 11 जख्मी हुए हैं। एक तिबी इसराइना अनादोलुज अंसी को बताया, शिमाली कस्बे जबालिया में एक इसराइल ड्रोन ने मोटरसाइकिल को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक फलस्तीनी हलाक اور 3 زخمی ہو گئے۔ ظاہر نے کہا وسطی شہر دیل البلاح میں شہریوں کی اجتماع کو نشانہ بنانے والے ڈرون حملے میں مزید ایک فلسطینی ہلاک ہوا۔ ایک دوسرے ڈرون حملے نے جنوبی غزہ کے خان یونس کے شمال میں القرارہ پل کے قریب ایک فلسطینی کو ہلاک، ایک کو زخمی کر ڈالا۔ اسی ذرائع کے مطابق خان یونس کے جنوب مغرب پہ الموازم بیگر افراد کے خیموں کی طرف اسرائیل فوجی گاڑیوں نے فائرنگ کی، جس سے 3 افراد زخمی ہو گئے۔ غزہ شہر میں اسرائیل جنگی کشتیوں سے ساحل کے قریب ماہی گیروں پر فائرنگ سے 3 ماہی گیر زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔
1: اور امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی اپنی تازہ ترین کارروائی مکمل کر لی ہے۔ چینل ایکس پر ایک بیان میں سینٹ کام نے کہا کہ امریکی افواج نے گزشتہ رات 9 بجے ایران کے خلاف فضائی حملوں کی کارروائی ختم کی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی تنصیبات، میزائل اور ڈرون کی صلاحیتوں اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا تاکہ ایران کی آبنۂ حرمت سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو دھمکیاں دینے کی صلاحیت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے اردو میں خبریں ختم ہوئیں۔
0: پائی سامن اب عطیہ کی آواز میں ایک ترکی نغمہ سماعت پائیے، گانے کا بول ہیں سیس سدا یوک۔

सामिन हमारी ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो बग़ैर हिसाब के गुजरे। ज़्यादातर जब हम माली मसाइल से नबर्द आज़मा होते हैं और बाज़ अवक़ात रियाजी के मसाइल से दो चार होते हैं तो हम जल्द से जल्द नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हमारा दिमाग उसके लिए काफ़ी नहीं होता। इन लम्हात में एक छोटा सा आला हमारे बचाव के लिए आता है, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन पर हो, हमारे कंप्यूटर में हो या हमारी मेज़ के पहलू में। अगर जिस सदियों से उसके नाम में फ़र्क आया है, लेकिन हम इस आले को कैलकुलेटर कहते हैं, जो बुनियादी तौर पर रियाजी के चार बुनियादी काम अंजाम देता है: जमा, मनफी, ज़र्ब और तकसीम।